0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में तय शुदा दो तरफा मुलाकात के दौरान तकरीबन हर मौजूद ज़ेर ग़ौर लाने की तवक्को रखते हैं, जिसमें तिजारत, गाड़ियों की

को बारूद की बू ने लपेट में लिया हुआ था और जमीन को खून की बू ने बोझिल कर रखा था। इसी दौरान उफक पर एक परचम बुलंद हुआ। इस पर ना कोई तलवार थी और ना ही ढाल, सिर्फ दूधिया सफेद पस मंजर पर चमकता हुआ सुर्ख हिलाल था। वो हिलाल दम तोड़ते हुए सिपाही के लिए आखिरी सांस, अपने बेटे की मुंतजिर माँ के लिए खुशखबरी और बेसहारा रह जाने वाले यतीम के लिए गर्म सूप बन गया था। आज हम 11 जून 1868 को उस्मानी जख्मी और बीमार सिपाहियों की इमदादी अंजुमन के नाम से वजूद में आने वाली दुनिया की कदीम तरीन इंसानी इमदादी तंजीमों में शुमार होने वाली कज़लाई यानी हिलाल अहमर की इस लर्जाखेज दास्तान की तरफ चलते हैं। क्या आप रहमत व शफकत के इस अजीम सफ़ेद परचम के पीछे छुपे इन बेनाम सूरमाओं को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हैं जो मैदान जंग की आग में भी इंसानियत का अलम बुलंद किए हुए थे? हिलाल अहमर का जहूर दरअसल एक अलम बगावत था, एक ज़मीर का बुलंद किया हुआ अलम बगावत। 1859 में सोल्फीरिनों की जंग की होलनाकियों को अपनी आंखों से देखने के बाद जब हेनरी डुनान ने रेड क्रॉस की बुनियाद रखी तो सल्तनत उस्मानिया के अहले फिक्र भी खामोश नहीं बैठे। डॉक्टर अब्दुल्ला बे, क्रीमिया के अजीज़ बे, सरदार अक्रम उमर पाशा और डॉक्टर मार्को पाशा जैसे नज़रियाती और मुखलिस अफराद जानते थे कि जंग सिर्फ मारने का नहीं बल्कि ज़िंदगी बचाने का भी इम्तिहान है। तहम हिलाल अहमर महज एक सरकारी इदारा नहीं था, ये उस्मानी माशरे की वक्फ और खैरात की रूह का जदीद दुनिया से हम आहंग रूप था। ये उस्मानी दौर की खैरात और वक्फ की रिवायत के जदीद अहद में इदारा जाती तसलसल के तौर पर सामने आया और इसके सरगर्मियों का एक बड़ा हिस्सा अवाम के अतियात और रजाकाराना तआवुन के जरिए जारी रहा। खवातीन का अपने घरों में पट्टियों का कपड़ा तैयार करना, हिलाल अहमर चाय के इज्तमाआत और बैजों की फरोख से हासिल होने वाली आमदनी इस अजीम इदारे के लिए हयात बख्श पानी साबित हुई। बास वक्तनामों में दर्ज तफसीलात के मुताबिक कुर्बानी की खालों से हासिल होने वाली आमदनी भी बराह रास्त ऐसे सिपाहियों के लिए मुख्तस की जाती थी जो जख्मी होने के बाद महाज से पीछे आ जाते थे। हिलाल अहमर महल और हवेलियों से लेकर कच्ची आबादियों तक माशरे के हर फर्द के लिए बिला मुआवजा भलाई के एक गैर तहरीरी मुआहदे की अलामत बन गया था। ये अंजुमन जंगे चनाकले यानी गेलीबोलू और बलकान की जंगों के दौरान अपने कठिन तरीन और फैसला कुन तरीन इम्तिहानों में से गुजरे। चनाकले में मैदान जंग से महज चंद 100 मीटर के फासले पर कायम किए गए आरसी फौजी अस्पतालों में हिलाल अहमर के डॉक्टरों और नर्सों ने सिर्फ तुर्क सिपाहियों ही की नहीं बल्कि जंगी कैदी बनने वाले ऑस्ट्रेलवी और न्यूजीलैंड के फौजियों और बरतानवी फौजियों की भी इसी शफकत के साथ खिदमत की। एक रिवायत के मुताबिक हिलाल अहमर के एक डॉक्टर को ऐन उस वक्त अपने बेटे की शहादत की खबर मिली जब वो एक मरीज के ऑपरेशन में मसरूफ था, लेकिन इसने हाथ में पकड़ा हुआ नश्तर नहीं छोड़ा और एक दूसरे जख्मी की जान बचाने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि इनके लिए इंसान हर किस्म की सियासत और जंग से बालातर था। यहाँ हिलाल अहमर खवातीन मरकज का भी खसूसी जिक्र जरूरी है। सफिया हुसैन आलबी जैसी पेशरो नर्सों ने बलकान के कीचड़ भरे रास्तों और हैजे की वबाओं के दौरान सिर्फ एक नारा बुलंद किया, वतन सलामत रहे, और नारे के साथ अपनी जानों तक की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम देती रहीं। जब वो आंसू बहाती आंखों के साथ शहीदों और गाजियों की खून आलूद पट्टियां धो रही थीं तो दरअसल एक पूरी कौम के मुस्तकबिल को भी पाक और रोशन कर रही थीं। बेसिम उमर पाशा की कोशिशों के नतीजे में ये अंजुमन महज एक इमदादी इदारा नहीं रही बल्कि बैनुल अक्वामी कानून में सल्तनत उस्मानिया की इंसान दोस्ती का दस्तखत बन गई। सरहदों से मावरा एक रहमत का पुल, मशरक बईद से अमरीका तक फैला हुआ दस्ते शफकत। हिलाल अहमर का दुनिया तक पहुंचने वाला हाथ सिर्फ करीबी इलाकों तक महदूद नहीं रहा बल्कि समुद्रों के पार भी पहुंच गया। इसकी एक नहायत नुमाया मिसाल इन इमदादी सरगर्मियों में मिलती है जो 19वीं सदी के इख्तिताम पर रियासतए मुत्तहिदा अमरीका में आने वाली बड़ी कुदरती आफात और दाखिली इंतशार के दौरान सल्तनत उस्मानिया ने हिलाल अहमर के तआवुन से अंजाम दी। एक ऐसी सल्तनत का जो खुद अपने जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रही थी, हजारों किलोमीटर दूर पेश आने वाली इंसानी अलमियत से बेखबर न रहना इस बात का सबूत था कि वक्फ और

सामिन, एक नौजवान लड़की अपनी पाकीज़गी से महरूम ना होने के लिए तेज़ पात के दरख्त में बदल जाती है। एक नौजवान डैफोडिल फूल की तरह अपनी ज़िंदगी जारी रखे हुए है, जिससे अपनी खूबसूरती से प्यार हो जाता है। उसकी नामुमकिन मोहब्बत के लिए एक नौजवान औरत के आंसुओं से एक झील बनती है। यूनानी अफसानों में इस बारे में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं कि फितरत, कुदरती मज़ाहिर और पौधे कैसे वजूद में आए। आज इस प्रोग्राम में हम एक कुदरती अजूबा दालियान कोई जेस को बयान करेंगे, जो कि अफसानों के मुताबिक आंसुओं पर मुश्तमिल है। मेलेटिस के बादशाह का एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते

सकते थे इस खौफ से कि ये मोहब्बत एक नामुमकिन और हराम मोहब्बत में बदल जाएगी। उसका भाई कावनो उस मुल्क छोड़कर चला जाता है। बहन बिबलस भी एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती है और रोने लगती है। जब वो रोते हुए आंसू बहाती है तो वो खुद को उस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। यहाँ पर उनके मुताबिक दालियान में झील बिबलिस के बहाए गए आंसुओं पर मुश्तमिल है। उसका भाई कावनोस जहाँ भी जाता है अपने नाम से एक शहर कायम करता है। ये शहर जिसका तذکرہ अफसानी कहानियों में मिलता है कदीम ज़माने में कावनोस का शहर था जिसका साहिल बहिरा रूम तक वसी था। कावनोस एक खलीज में कायम किया गया था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दरियाए दालियान के जरिए ले जाने वाले एलुवियम खलीज के मुँह को भर देते हैं और शहर समंदर से कट जाता है। क्विजेस दालियान का इलाका दरअसल इस तरह बनता है। यहाँ के झीलों को दुनिया के सात पेचीदा तरीन झीलों के निज़ामों में से एक समझा जाता है। क्विजेस झील और बहिरा रूम के दरमियान ये इलाका एक बहुत ही ख़ास जुग्राफिया है। वो इलाका जहाँ समंदर और झील एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सरकंडों से ढके हुए रास्तों पर मुश्तमिल है। ये झीलें एक शानदार जगह हैं जिसका मुतासिर कुन नज़ारा एक भूल भुलियों जैसा मिलता जुलता है और एक माहौलियाती निज़ाम है जो बहुत से जिंदा प्रजातियों की मेज़बानी भी करता है। इन मखलूक़ात में से एक करेता करेतास हैं जो मादूम होने के ख़तरे से दो चार हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे उनकी शनाख्त दालियान से हुई हो। इस तुजू साहिल जो समंदर और झील के समंदर पर वाक़ है करेता करेता कछुओं के रहने और अफजाइश का इलाका है। ज़ख्मी समंदरी कछुओं के इलाज और तहफ़ के लिए यहाँ एक मरकज़ भी कायम है। ये तुर्की का पहला और वाहिद सी टर्टल्स रिसर्च एंड रिहेबलीटेशन सेंटर है। रज़ाकारियत पर मबनी ये मरकज़ करेता करेता कछुओं से मुतालिक मुख्तलिफ साइंसी तहकीकी मंसूबे भी चलाता है। सामिन, दालियान एक आलमी शोहरत याफ्ता जगह है, ना सिर्फ इसके खसूसी लगून सिस्टम और करेता करेता के लिए बल्कि इसके चट्टानों के मकबरों के लिए भी। चट्टानों के मकबरे कदीम शहर कावनोस में वाक़ हैं। कदीम ज़माने में एक अहम बंदरगाही शहर कावनोस आज यूनेस्को के आलमी सकाफती वरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल है। कदीम शहर में थिएटर, स्तुआ, अगोरा, हमाम, शहर की दीवारें और मंदिर के खंडरात कावनोस की अहमियत और हजम को जाहिर करते हैं। चट्टानों में तराशे गए शानदार मकबरे लोगों को एक और वक्त और दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। कावनोस के बादशाहों ने देवताओं के करीब होने के लिए मकबरों को ऊंची और खड़ी चट्टानों पर तराशा था। अगरचे लीकियन रॉक के मकबरों से मिलते जुलते हैं, माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये मकबरे कावनोस के लिए बिल्कुल मुनफरिद हैं। ज़मीनी रास्ते से इन 2400 साल पुराने मकबरों तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ कश्ती के जरिए उस तक जा सकते हैं। साहिल पर पहुंचने के बाद मकबरों को करीब से देखने के लिए 1 किलोमीटर की दुश्वार गुजार चढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन मकबरों में दाखिल होना मना है। इस वजह से बहुत से लोग समंदर से मकबरों के हेलेनिस्टिक मंदिर जैसे अगवाड़े को देखने को तरजीह देते हैं। इन मकबरों को ऐसी जगह से देखना बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है जहाँ दरख्तों का सब्ज़ा समंदर के नीले रंग में झलकता है। दालियान एक ऐसा शानदार जुग्राफिया है कि उसके हर हिस्से से हैरत होती है। इनमें से एक आलमी शोहरत याफ्ता मिट्टी का गुसल है। कीचड़ जिसमें मादनियात की ज़्यादा मकदार होती है गठिया और जिल्द की बीमारियों के लिए अच्छा कहा जाता है और यह ख्याल है कि यह झुर्रियों को दूर करता है। यही वजह है कि हर साल हज़ारों सयाह मिट्टी के हमाम का दौरा भी करते हैं। दालियान में बताने के लिए और बहुत भी कुछ है, लेकिन आइए अनातोलिया के आसार कदीमा में सबसे पहले का जिक्र करना ना भूलें। ये मालूम है कि कावनोस सॉल्ट जो कदीम ज़माने में आँखों का मरहम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसी में तैयार किया गया था। नमक के काम यहाँ हैरत की कोई इंतहा नहीं है। अनोखी मखलूक दालियान क्विजेस लगून सिस्टम में रहती है जहाँ समंदर और झील आपस में मिल जाते हैं। जब ऊपर से देखा जाता है तो कुछ ऐसे फीते से तशबीह देते हैं कुछ तसादुफी तौर पर खींची गई खमीदा लकीरों से, कुछ भूल भुलियों से, समंदर से आयोडीन की बू, इंजीर और देवदार के दरख्तों से निकलने वाली शानदार खुशबू के साथ घुल मिल जाती है। यह खुशबू लोगों को उन कदीम ज़माने की तरफ दावत देती है जहाँ अफसानवी कहानियाँ सुनाई जाती थीं। आज हमने दालियान के

बारे में बात की जो अपनी झीलों के साथ तवक्कुआ से कहीं ज्यादा एक तजुर्बा पेश करता है, जिसका एक सिरा एक झील है, एक समंदर का एक सिरा है। ढलवानों से मुजैन पत्थरों के दिलकश मकबरे, कदीम शहर के खंडरात, करेता करेता कछुए और मिट्टी के हमाम यहाँ काबिल जिक्र हैं। नस्ली खान देर में जो उलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।